एक होर शब्द विच अपनी जीवन दी ओ झाकी दर्शा रहे ने, जो कुछ उन्हां नाल बीतिया, जो कुछ उन्हां नाल कीता गया। कहिंदे हन एक वारी दा जिक्र है, मेरियां बाहां बन के लत्तां बन के गठड़ी दा रूप देख के, गठड़ी वंगर जिवें गठड़ी बद्धी हुंदी, मैनूं हाथी अगे सुटिया गया। पूजा बांध पिला कर डारियो, पर वाहेगुरु तेरा लख लख शुक्र है, हाथी नू उस गठड़ी विचों पता नहीं कैसा अक्ष पिया, की दिसिया, हाथी चीका मारदा भज गया।

अगर तुमरा जोर काजी काजी बकबो हस्ती तोर। जेड़ा महावत हाथी ते बैठा सी काजी ओनू कह रहा है महावत तू अपनी सही मेहनत ड्यूटी नहीं कर रहा ते एदी सजा तैनू भुगतनी पैगी।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांके हृदय बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां पर मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

सिप साला करन वाला, कीर्ति करन वाला, उसनु गुरु महाराज ने ढाडी का नाम दिता है। इतिहास विच पुराने ग्रंथा विच जिक्र आउंदा है कि भगवान की उस्तत करन वाला जो हर वेले अपने हत्थां दे विच वीणा लैके रखदा सी, जिसका नाम नारद करके आया है, हर वेले प्रभु की उस्तत करदा सी, कीर्तन करदा सी परमात्मा। एक वेर नारद भगवान ने प्रभु कोल एक सवाल किया, है भगवान जे तेरे दर्शन करने हो ता दस कित्थे तेरे दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि तेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्रभु का मिलाप भावे कोई आखे के हथा दिया हथेलियां दे विचकार दर्शन करा दें, कोई आखे त्रिकुटी चढ़ा के तेन दर्शन करा दें, कितने ही कर्मकांड करके कोई आखे के दर्शन हो जान, ये नामुमकिन है, ये पखंड है, कर्मकांड है, इंज दर्शन नहीं होंगे। उसके ओदे दर्शन भगवान नारद कहते हैं कि ऐ परमात्मा तेरे दर्शन करने होने तक कितने दर्शन करा। तो कहते हैं कि भगवान ने उस वेले कहा, ऐ भगत जे मेरे दर्शन करने हो ना मैं किसे दक्षिण विच वसदा हाँ, ना किधरे पश्चिम विच वसदा हाँ, अते ना ही किसे खास स्थान ते मेरा वासा है, ना मैं मंदिर विच हाँ, ना किसे मस्जिद विच, ना किसे गुरुद्वारे विच, ना किसे गिरजे विच, जेड़ा मैनू इन्हां थावां ते लोड़दा है वो भरम विच है, जे मैनू लभना होवे तां मैं जिथे संगत प्रभु दे भगत जन बैठ के कीर्तन करदे होवन, उना दिया जिथे जुतियां पईयां होवन, उना दी जुतियां दी थां दे उत्ते उना दी चरण धूड़ दे विच मेरा स्थान। भगवान अपने भगतां दे वस है, उना दी संगत भगत जेड़े हन भावें जिथे मर्जी उसनू प्रगट कर लैन, भगत ने चाहिया तां पत्थर दे विचों भी प्रगट कर लैन, जे भगत ने चाहिया तां उस परमात्मा कोलों अपनी खेती दे विच हल भी जुताया, अपने डंगर भी उस कोलों चुगवाए। ए भगतां दी खेड है जिन्हां नूं प्रतख दर्शन हुंदे हन उस वाहगुरु दे। परमात्मा ने कहा है, ऐ नारद मेरा घर मेरा स्थान साध संगत दे विचकार है, उस तो सिवा मेरा कोई स्थान नहीं। जिहड़े उस्तत करदे हन, सिप सालाह करदे हन, इक मन होके जपदे हन, कीर्ति दे विच जुड़े होए हन, निष्कपट होके, निर्छल होके, निस्वार्थ होके जिहड़े कीर्ति करदे हन प्रभु दी, उन्हां नूं मैं परतक अंतस्करण रूप विच अंतर आत्मिक दर्शन दिंदा हां, उत्थे मेरे दर्शन हुंदे हन। और भगत नारद इतना प्रभु का निकटवर्ती सी, प्रभु की प्रसन्नता सी उस भगत नारद उत्ते, क्योंकि वह कीर्ति करने वाला सी। तो गुरु महाराज ने गुरबाणी दे विच कीर्ति करने वाले नू, कीर्तन करने वाले नू, सिप सालाह करने वाले नू ढाडी का नाम दिता है। आखते ने गुरु पातशाह,

की प्रयोजन लेके आया है। अगू गुरु पातशाह जी ने एक सवाल किया, एक मंग की थी।

कोई रिश्वत खोर हो गए ने। ओही करम धर्म नू भुला के सच नू छड़ के झूठ दा बुरका उड़िया होया है, और ए हालत हुई है।

कोई ऐसी वस्तु दे जिसनू मैं संसार दे पुले पटके लोकां नू जाके वरता सकां। अरदास करते हैं

पता नहीं किन्ना कु सियाण है, किन्ना कु सुगड़ है, कोई हिसाब ला सकता है? क्योंकि उसकी किरत का हिसाब नहीं लाया जाता। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन समार। तेरी दिती हुई दात की समझ नहीं आती, तेरी समझ कितों आ? तेरी दात का ही मुल नहीं पाया जाता, तेरा कौन मुल पावे? तेरी दात ही एडी सोहनी, एडी खूबसूरत, एडी जुगत वाली है, तू किन्ना सियाना होगा? शायद कदने मत समझी उहदे नालों सियाना कोई होर भी है, जिसने तैनू शरीर दिता है, जिसने शरीर च मन पाया, जिसने तैनू वर्तन वास्ते धन दिता है, जिस दियां सारियां बख्शां भोगदा है, उहदे नालों सियाना होर तैनू कोई मिलेगा नहीं। ते कई बार तो इन्ना भी भुलेखा लग जाता है, तू ऐसा समझ लग पैना उन्हें कोई गलती की है, मैं ठीक कर दिया। जो उन्हें बनाया शायद गलत बनाया, मैं उन्हें ठीक कर देवा। जो उन्हें रचिया शायद गलत रचिया है, मैं सुधार कर देवा। अपने आप में सियाना समझ बैठा होवांगा। कोई सूरत नहीं, कोई तरीका नहीं कि तू अपने आप में सियाना समझ सके। जिसने तन मन धन जिन प्रभ दिया, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान। एक शब्द च महाराज सच्चे पातशाह ने सानू चेता कराया, चेता ही कराने वाली गल है, पता सारा है, भुल जाने साहिबा ने पावन बाणी च सानू उन्हां चीजां की सारी लिस्ट तां नहीं आउंदी, लेकिन मोटियां मोटियां जिन्हां बिना बंदे का नहीं सरदा, उन्हां दा जिक्र महाराज ने किया। तो कहने तेनू ओदा चेता है, तेनू ओदा ख्याल है, जिसने तेनू इन्ना कुछ दिता है,

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवां नू उपदेश देंदे होए एक गल समझांदे ने, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नू भी माड़ा आखिया, वो ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखते। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असी अपने आप नू चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने हम अवगुण भरे एक गुण नाई। हे मेरी पातशाह, मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा हां।

कंचन नारी में जियो लोबत है वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री, बस इना विषय विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श, तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

असी चंगे क्यों नहीं। जे मनुख चंगियाई वाल तुरे ना वो अपने गुण ही गिनी जांदा, कहिंदा वेखो मेरे अंदर किन्ने गुण ने। कदी असी परमात्मा दे गुणा वाल भी ध्यान दिता है? जे एक व्यक्ति दे गुण नहीं गिने जा सकते कि असी परमात्मा दे गुण गिन सकते नहीं। इथे यह कहना पाएगा, हे परमात्मा तू बेअंत है, मेरे अंदर अवगुण बतेरे ने, मैं ते अवगुण बख्शान आया। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा, किछ रूप नहीं, मेरा ते रूप भी चंगा नहीं। हुण तुसी हैरान होवोगे कि रूप केड़ा। सानू अपनी सुंदरता ते माण है, खूबसूरती ते माण है कि असी बड़े खूबसूरत। साहब कहिंदे ने ना भाई, इथे रूप है सेवा दा। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं। कईयां नूं माण हुंदा कि मेरी जात बड़ी उच्ची है, मैं बड़ी उच्ची कुल विचों हां। साहब कहिंदे ने नहीं, इथे रूप है सेवा दा ते जात है नाम जपण वालियां दी। उच्ची कुल विच कौन ने? जिन्हां कुल सिमरन है। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा। हे परमात्मा मेरे कोई ऐसा ढंग भी नहीं। फिर कहिंदे ने, क्या मूह लै बोले गुण विहून, नाम जपिया ना। क्या मूह लै बोले? हे परमात्मा मैं किड़ा मूह लैके तेरे सामने आवां, किवें तेरा सामना करा? कहिंदे ने जिवें एक मित्र अपने मित्र नूं कहिंदा है, मित्रा ऐ मेरा एक काम है ते तू कर सकदा, ते तू ये काम मेरा जरूर करना है। कहन लगा, चंगा भाई जरूर करांगा। कुछ समा बीते है कि दोनों मित्रां दा सामना हो गया। हुण जिस मित्र ने अपने मित्र नूं काम किया सी उहनूं भी याद आ गया, ते जिसने हामी भरी सी उहनूं भी याद आ गया। हुण जिसने काम आख्या सी ओह कहन लगा, लै मेरा मित्र मिलिया, काम होया होना, मैं अज इहनूं पुछना। ते जिन्हें करना सी ओहने कीता, कोई नहीं हुण ओह अख बचांदा है। कहिंदा किते होवे ना होवे, ए अख परां करे ते मैं कोलों दी लंघ जां, इहदा मेरा सामना ना होवे। जे सामना हो गया, इहने मैनूं पुछना, मित्रा सुना काम कीता ही, मैं जवाब की देवांगा, की आखांगा? साहिब कहिंदे ने भाई इसे तरह उस परमात्मा अकाल पुरख ने तेरे जिम्मे एक ड्यूटी लाई सी। जदों तू परमात्मा तो आया है ना, तू संसार विच जन्म लिया है ना, माता दे गर्भ विच सैं, उदों तू परमात्मा नाल एक वादा कीता सी, हे परमात्मा एक बार संसार विच भेज, मैं तेरा सिमरन जरूर करांगा। उदों एक वादा कीता होया। कहिंदे ने हुण ओह ते तू भुल गए है, ते परमात्मा दा सामना किवें करें? जदों परमात्मा दे सामने होया, उन्ने पहले पुछने, सुना मित्रा जेड़ा वादा कर गया सैं वो पूरा कीता ही? नाम जपिया ना तेरा, मैं तेरा नाम नहीं जपिया, मैं सिमरन नहीं कीता, जेड़ा वादा कीता सी मैं पूरा नहीं कर सकिया। साहब कहिंदे

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं।

ए माधो माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सतसंग तो ध्यान देना हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ। सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

चंगे। हम पापी तुम पाप खंड। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर देसा सामने वाला चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा का भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा। आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल दें।

तुम समसर नहीं दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते ने हे मेरे माधो असी के हो जाए ते आप के हो जाए, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नहीं दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा, तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है। मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं, मेरे वर्गा पापी कोई नहीं, ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

मैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकता है, भगत ही कह सकता है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बारक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए

एक खिन लेना हर को नाम गोविंद, हम ऐसे अपराधी। कैसा अपराध है, रात पैंदी है सौ जाने हैं, दिन चढ़ दे उठ के कमा कारण तुर पैने हैं, ते परमात्मा दा नाम कदो जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन लेना हर को नाम, एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा हो।

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है। कहिंदे 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है। ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तेनु नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा। साच नाम आधार जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि ए गुरु दी शरण विचों मिल सकदा है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने कड़े नू आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसी तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विच दर्ज है।

अंतरजोत राम प्रगासा गुरमुख बिरले जाने कहानी कहते हैं बीत चुकी घटना या जेड़ी घटना घट रही है उसनु कोई सुनावे कोई कहे अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनते हैं पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी और भगत कबीर साहब कह रहे हैं अंतर जोत राम प्रगासा जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए ता फिर ओ इस कहानी नु जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है पर एक गल है गुरमुख विरले जानी कोई विरला गुरमुख इस कहानी नु जानदा है

कि परमेश्वर का जद मिलाप हुंदा है फिर इंसान की अवस्था की हुंदी है और परमेश्वर का मिलाप गुरु करांदा है और ये

ਤਿੰਨ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

गुरु ने कृपा की थी, ज्ञान अंजन, अंजन कहंदे ने सुरमा। गुरु ने ज्ञान का ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल की सोझी हो गई, राम नाम तो बगैर जीवन

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नास हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओदी जोत।

ता तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर दिंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती, हर इंसान भज रहा है, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता है। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता है। हर इंसान भज रहे है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं।

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाने ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानू तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश देंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमाते हैं,

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरु ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पीछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदा है। ते गुरु कहंदे तुसी मेनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो वो परमेश्वर तू भुलिया होया। ते जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। ते सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके ओहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हैं

बगैर परमेश्वर की कहानी का पता नहीं लगता। गुरु परमेश्वर की कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जिहड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कोई सेवा का चा है, बहुत घट होंदे हैं सेवा वाले, बहुते थे अपने स्वार्थ वास्ते ये नारा लगाते हैं असा सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंदी, सेवा ते मन होंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत पर माया पिछे लड़ पे। ये लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा, पानी विच रह के पानी दे विच रहन वाले जीवां नू खा के अपनी लालच वाली ये बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा ठीक है भरा, जे मैं मर जाना है तो जिंदा तू भी नहीं रहेगा, तेरी भी मौत होगी,

जंगल दा मस्त हाथी बनेगा और जंगल विच पटकदा पटकदा एक दिन उस जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई और माया ने दोनों नू भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों की मौत हुई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नू गुरबाणी विच भी साहब जी बयान करते हैं। राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कार ऊपर कढ़ निस्तारे। गज पत पार उतारे, अनेक शब्दां विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया और वह समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी। बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, यह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंघ दे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी। ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू किया। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा। पिछे नहीं मुड़िया जांदा ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है। इसने जोर लाया, कुछ पिछा आया पर फिर तंदुए दा जोर चलिया ते हाथी नू खिंच के ओ पानी दे

अपने आप तो डर लगता है। फिर मेरा रूप बिगड़िया होया भयानक है, मुबारक है। जदों बंदे नूं अपने आप कोलों डर लगन लग पवे ना, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਲਕ, ਪਲਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਪਾਂ ਟੂਮਾਰੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਲਾਹ ਬਿਆਲ, ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਚੋਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਸੀ ਕੌਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਭਿਅ ਲੋਕ, ਸਭਿਅਤਾ ਰਹਿਤ ਸਭਿਅਤਾਹੀਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਸਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨਿਓਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੁਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦਾ ਛੁਰਾ ਮੈਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ।
मैं पत की पंध मेनू अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण की रहनी की कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं तेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मैनू बचा सकता ऐसे आसरे मैं यह आस एह आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा मुख निंदा आखा दिन रात मैं लोगों के औगण कढ के यह सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजिया के औगण कढ़ता रहे अपने औगणा ते निगाह ही नहीं पई ते जिन्ना चिर अपने औगणा ते निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवेगा। धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह दे पावन दरबार च आप जानते हो साहबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरियां मोटियां मोटियां सब बीमारियां दा इलाज महाराज सच्चे पातशाह दी निगरानी हेठ होया करदा सी बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकन वाली चीज सी वरती जा सकन वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने कच कीती सी। इथों तक भी दस्या गया है एक बारी दिल्ली दरबार विच भी एक बहुत वड्डे आकार की हरण की लोड़ पै गई सी हकीमां ने कह दिता ते महाराज के दवाखाने बिना होर किधरों नहीं सी मिलना। वो एक प्रेमी का मंजा चुक के लियाए घर दे बंदे लिया के वह मंजा रखिया वह कहिंदा मैनू महाराज को लै चलो मरीज जो है रोगी कहिंदा मैनू महाराज के बूहे ते लै चलो वह कहन लगे तैनू दवाखाने विच हकीमां ते वैदां दे हवाले करना है महाराज के दर्शन तू तगड़ा होके कर ली महाराज इत्थे भी आउंदे ने दर्शन बख्शदे ने सतगुरु पातशाह उन्हां रोगियां नू आके नाम जपण निरंकार नाल जुड़न दा उपदेश भी नाल नाल देंदे रहिंदे सी दवा दारू भी चलदा रहे कहिंदा नहीं मैनू हुणे लै चलो महाराज एक बारी मैनू वेख लै सियाणियां ने बहुत किया तैनू वैदां ने वेखना हकीमां ने वेखना महाराज दे दर्शन करने ने नहीं महाराज मैनू वेखण जिद कर बैठा रोगी की जिद बड़ी हुंदी उन्हें क्या चलो कोई नहीं लै चलो मंजा चुके महाराज के बूहे ते लै आए दरबार ने कहा सतगुरु आराम फरमा रहे ने विश्राम कर रहे ने हालांकि सतगुरु ने कहा विश्राम करना उन्होंने विश्राम विच भी भगती ते समाधि है उन्होंने इकले हो जाने विच भी समाधि है जपन है सिमरन है पर उपकार की भावना से कुछ व्यवंता होनगियां पर नहीं उसने क्या विश्राम कर रहे ने यह कहन लगा मैनू इत्थे प्यार रहन दिओ जिस वेले वो बाहर निकलन गए मैनू एक बार वेख लैन फिर मेरा दवा दारू शुरू करे आवाज अंदर भी पहुंच गई महाराज ने पूछा क्यों बई की गल है दरबार ने दसिया महाराज रोगी आया वह कहिंदा पहला महाराज मैनू वेखण फिर मेरा इलाज शुरू करो महाराज पातशाह आप बाहर आ गए धन गुरु हर राय साहब बाहर आ गए जिस वेले साहिबां दे दर्शन होए वह जिहड़ा पासा नहीं सी लै सकदा ना पिया पिया सज्जा खब्बा पासा नहीं सी मोड़ सकदा सारा शरीर गलिया पिया सी वैदा हकीमां ने जिसके बारे जवाब दे दिता होया सी महाराज नूं वेखदिया सार छेती नाल उठण दा जतन करन लगा साथियां ने कहा प्यार हो महाराज ने भी इशारा किया मगर उठ के बैठ गया मंजे ते उठ के थले उतरन लगा महाराज कहन लगे टिक जा की चाहना है कि कहिंदा बस महाराज मैं ही चाहुंदा सां तुसीं मैनूं वेख लो साहिबां ने मुस्कुरा के ओही गल कही भलिया लोका तैनू वेखण के वैद हकीम दवाई देणगे तू ठीक हो जाएगा आ गए तो हुण तैनू ठीक करके तोरांगे साडे वेखण वाली कहड़ी गल है सिर नीवा करके कहन लगा महाराज वह मैनू बाहरों वेखण गए मलमा ला के ठीक करके तोर देणगे मेरे अंदर किन्ना कोड़ वरतिया जिहड़ा फुट के बाहर आ गया तां तुहानू ही दिसना वैदा हकीमां नूं कोई नहीं दिसना किस काम क्रोध ते गंध ने मेरे अंदरों मैनू रोगी कीता ते ओह रोग मेरे बाहर चमड़ी ते आ गए ने वो जिहड़े मेरे अंदर दे रोग ने वह वैदा ते हकीमां नूं नजर नहीं आउंदे साहब जी वह तो तुसी देख सकते हो इस करके क्या पहला मैनू अंदरों ठीक करना शुरू करो बाहरों ठीक हो जावांगा ते ठीक है पर जे मैं अंदरों रोगी रह गया ते गल की साहब हस पे कह लगे शाबाश जे तेरा अंदर ख्याल भी पै गया ना कि अंदर कुछ रोग है अंदर कुछ बुराई है अंदर कुछ खराबी है तो हुण तेरे ठीक होने के दिन आ गए ये सच करके जानना जिस वेले मनुख का अपने आप ते ध्यान ही पै जावे ना कि मेरे अंदर कुछ खराबी है धन गुरु नानक कहिंदे ने मैनू इज्जत का कोई ख्याल नहीं मैनू अपनी करनी का कोई ख्याल नहीं मैं पत की पंध न करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा बिकरार बिगड़िया होया मेरा अंदर का रूप भयानक रूप
तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार मुख निंदा आखां दिन रात इस मूह नाल मैं लोकां दी निंदिया करदियां जिंदगी बिता रहा दिन रात लोकां दियां बुराइयां कढ़ियां पर घर जो ही नीच सनात मैं बड़ा नीच ते कमीना हां कि मैं लोकां दे घरां विच वेखना ध्यान देना लोकां दे घरां वल वेखना आम तौर ते बाणी विच इस सेंस च लिया गया है इस भाव च लिया गया है जेड़ा कोई स्त्री किसी दे मर्द वल वेखे या कोई मर्द किसी दी स्त्री वल वेखे लेकिन केवल श्रीना तक दी गल नहीं है एक कामी पुरुष अपने घर वल ना वेखदा होया किसी दी इज्जत वल वेखदा है बहुत माड़ी गल एक स्त्री अपने पति दी धर्म पत्नी ना रह के ईमानदार ना रह के किसी मर्द वल मैली निगाह नाल वेखे इस नूं पर घर जोना कहिंदे ने पराए घर वल वेखना लेकिन साडे लोकां दी निगाह इत्थे ही थोड़ा टिकी असीं धन भी लोकां दे घरां दा वेखने आ वड्याईयां भी लोकां दे घरां दीआं वेखने आ जो कुछ किसे दे घर च नजर आउंदा है उत्थे ही साडी लोभ दी निगाह टिकी हर चीज ते साडी निगाह मैली हुंदी चली जांदी साहिब कहिंदे ने इस तरह मेरी निगाह लोकां दे घरां विच पै रही पर घर जो ही देखदा हां लोकां दे घरां विच वेखदा हां बड़ा नीच ते कमीना बण है काम क्रोध तन वसे चंडाल ये तुसी भी जानते हो कि आम तौर पर बंदा कातल ते खूनी उदों बनता है जदों ये लोभ दे वस होवे काम दे वस होवे क्रोध दे वस होवे ये खराबियां बंदे कोलों बहुत गुनाह करांदियां हैं साहिब कहिंदे ने इन्हां चंडालां ने मेरे कोलों बड़ा नुकसान कराया अपना भी पराया भी इन्हां चंडालां ने मैनूं नेक इंसान नहीं बन दिता नहीं रहन दिता तानक रूप रहा करतार हाही सुरत मलूकी वेस कई बार ऐसा भी होया कि वह तो लोग जिन्हों की गल महाराज ने जिक्र किया इतने वो लोग तो बाहरों भी गंदे रहते सन सफाई बाहरले जीवन की भी नहीं रखते बाहरों भी मर्यादा नहीं रखते पर कई बार ऐसा भी होया कि आम बंद ने बाहरों जो बहुत सोहना साधा वाला वेस धारण बना ले संतां वाला वेस धारण कर ले साहब कहिंदे ने ऐसा भी होया हाही सुरत दिमाग में आया है कि मैं लोगों को फसावा किस तरह लोग फसन किस तरह मेरी फाही में किवें आउण मैं लोगों को किस तरह अपने चुंगल च लै सकां मलूकी वेस बाहरों मेरा नेक इंसानों वाला साधा वाला फकीर वाला वेस है औ ठगवाड़ा ठगी देस मैं ठग लोगों को ठगण से लगा हुआ खरा सियाणा बहुता भार उंज तां लोकी मैनूं सियाणा समझदे ने मैं अपने आप च सियाणा बणदा भी बहुत हां मगर ठगी ते पाप दा भार मैं अपने सिर ते वधाई चलिया जा रहा तानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर मालक तेरियां रहमतां ते बख्शिशां दा मैं शाकर ना होया शुकराना ना कीता किरत कण बन गया जेड़ा बंदा किसे दा लै के किसे दा खा के फिर उहदा भी बुरा चितवे उस नूं हराम खोर कह देने आप खा के हराम करन वाला या बिना कीते खान वाला बिना कुछ कीतियां दे खा के डकार मार जान वाला बंदा उस नूं हराम खोर कहिंदे जिहड़ा हलाल नहीं करता खादे होए जो कुछ उस नूं प्राप्त है उहदा हक अदा नहीं करता साहिब कहिंदे ने मैं तेरियां दातां दा शुकराना ना कर सकिया ना मैथों कुछ घाल होई ते ना मैं तेरियां बख्शिशां दा शुकराना कर सकिया बल्कि तैथों बेमुख होया रहा इस तों वड्डा हराम खोर होर की होवे मैं कीता ना जाता हराम खोर हूं क्या मुंह देसा दुष्ट चोर मैं तेरे बूहे ते तेरे दर ते उते आके की मुंह विखावांगा मेरे अंदर किन्नी दुष्टताई ते किन्ना चोरां वाली गंदी बिरती है मेरे अंदर पल रही नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार मैं निमाना मैं नीच एक विचार दे रहा हां कि मैं चंगे रूप च नहीं रह रहा मैं कोई चंगा जीवन बतीत नहीं कर रहा धन गुरु नानक का यह शब्द साहबां दी यह बाणी सानू अपने अंदर झात पाउण वास्ते एक बहुत प्यारी रोशनी है ते मनुख नू जे अपने अंदर यह रोशनी मार के अपने

विस्तार किवन किन्हीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया किन्हीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

रखियो ग्रे पीतल उठ उहाँ को दौड़ो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सो घरख नहीं जाने हो।

मन तन तेरा तन भी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास्त मारी तेरा।

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण चलो मार्ग गोविंद। ये केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। वो मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर की उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने। ये मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ये रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम का अमृत पींदी है, जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम का अमृत समा गया है उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु का परिवार नजर आते हैं। जे उदा परिवार है तो एक पिता एक सिखे हम बालक, साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसके बालक हाँ। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जाणगे। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

ऐसे भी मनुख आए जिहड़े कहिंदे ने इह धरती मेरी है, इहदे विच्चों मैं एक सूई दे नक्के जिन्नी धरती किसे नूं देण वास्ते तैयार नहीं। ऐसे भी मनुख आए पर चले गए, जुगां जुगांतरां तों मैं वेखदा आ रहा हां जिहड़े इहदे मालक बणदे माण अहंकार विच मत्ते होए अपने आप नूं खुद मुख्तियार दसदे सन। मैं तेरे कोलों पुछदा ओह कित्थे चले गए। अखीरलियां पंक्तियां विच एक ख्याल पेश कीता है।

सासत सिमृत वेद चार मुखा गर बिचुरे तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गवन करे खटकर माते दुगुणे पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जान राज मिलख।

पर किवें तेरा मिलाप परमात्मा दे नाल होवे। जेडे गुण परमात्मा चाहुंदा है वो तां तेरे विच नहीं हन, क्योंकि चंगा इंसान किसी चंगियाई नाल है, शुभ गुना करके है, शुभ कर्मा करके है। जे शुभ गुण नहीं, शुभ कर्म नहीं, ते वो चंगा किवें हो सकदा है। साहिब कथन करदे ने कि परमात्मा नाल मिलाप ते हर कोई मनुख चाहुंदा है कि मेरा परमात्मा नाल मिलाप हो जाए, मेरा संबंध जुड़ जाए। पर किवें

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

किसी नाल अपराध करनो ते तू मुड़दा नहीं, पर तू अपने नाल भी अपराध कर रहे। किस तरह? नाम ना जपे से आत्म काती, जो मनुख नाम नहीं जपदे सिमरन नहीं करदे, वो अपनी आत्मा दा आत्मघात करके अपराध कर रहे हैं।

कोई ना रखना। विश्वास काती अकिरत काना, विश्वास काती किसनू कहिंदे ने, जेड़ा किसे नू प्यार विच ले आके बसा के मारे, अपना बना के मारे उसनू विश्वास काती कहिंदे। ते अकिरत खान भाई साहब कहिंदे ने।

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले।

नौजवान कहन लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा मैं बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दिंदा, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदा। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवी, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहिंदे